पावन जुरी विच दोने बचे सुलाइमान सतगुरु जी हजूरी विच सच चुकी हैं जी। सो परिवार नूं हुक्म होया सी कि जातू मेरे वल है ता क्या मां शंदा तुझ सब कुछ मैनूं सौंपिया जां तेरा बंदा

दिन हर गुस्से खबर से गुरु कर आए बाणा भी पा लिया अमृत भी छक लिया पर जे अंदरों कपट ना गया तो कोई फायदा नहीं अंदरों निर्मल बाहरों निर्मल सतगुरु ऐसी कृपा करो साडे सारयां दे मन धुप जाण बाणी धोंदी है बाणी पाक पवित्र करदी है बाणी निर्मल करदी है वध तो वध बाणी पढ़नी चाहीदी है गुरसिखां दी गुरमुखां दी संगत करनी चाहीदी है क्या